पकड़ संदूक दी, नो गलत हो गया, कर बूहा स्थान, हाँ बुस ताबी नी आ पकड़ संदूक दी चाबी, कर बूहा सांब शताबी नी आ पकड़ संदूक दी चाबी नी, कोई सूट तू कड गुलाबी नी पा तिले दी गुरगाबी नी, ले बूटियां वाला रुमाल कुड़े मेले नू, आहा मेले नू चल मेरे नाल कुड़े, हो बसाखी अज मनावांगे, साखी अज मनावांगे, मेले ते भंगड़े पावांगे, दोवें रल के पींग चढ़ावांगे, ते बह के उत्थे खावांगे लड्डूआं दा, ओ

के अड़या लोक मारी दे ताने वे, जो सी पीड़ पराई असी अपने तन ते ला बैठे। तेरी खातर सजना असी जग नाल मत्था ला बैठे। छोटी उम्रे अखियां लाइया लगे रोग अवले, मीडिया खुल के गले च लटकन लोक आख दे चले। तेरे तीर ही जर दे सजना, तेरे तीर ही जर दे सजना, असी अपने सीने खा बैठे। तू कि दर्द नू जाने, असी बहुता दर्द हंडा बैठे। जिस किसे भी इश्क कमाया पले पई जुदाई, अपने आप दी होश रहे ना दुश्मन बने लकाई। जो दुनिया पत्थर मारे असी ओ भी हस हस खा बैठे। तेरी खातर सजना असी जग नाल मत्था ला बैठे। तू की दर्द नू जाने असी बहुता दर्द हंडा बैठे।

सब दरिया खेस कब राए सी, वेला बूटे माने चावा नाल पाए सी। गद्दे बैड देने पैरां च मदोलिया, संदूक मां दा जदों सी मैं खोलिया, हर कपड़ा सी रो रो के बोलिया।

जा सारे कर दिए ले जा लाडा परी विदाई, जा सारे कर दिए ले जा लाडा परी विदाई।

जगती रीत अवली अगे जोर नहीं चलिया कोई। जगती रीत अवली अगे जोर नहीं चलिया कोई। पटोलियां दी खेड मुक्की पटोलियां दी खेड मुक्की वीरां संग रोक मनाई पटोले।

इस मिट्टी दे उत्ते खड़के तू कर दाए मनमानी, भला ना लोचे किसे दा बंदिया कर दाए नित हानी। मिट्टी सब कुछ चुप कर सहंदी,

एक नाल तू विस्फोटे इकट्ठे कर ले, अपनी झूठी शान दिखा कर बेसमेंट सब भर ले। रजनीए नू पता नहीं लगना।

अपने खातर दुनिया मर दी मिट दी आईए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाईए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाईए। चरखड़िया ते चढ़ना बंद बंद कटवाना बड़ा ही औखा है, सरबंस बार के धर्म निभाना बड़ा ही औखा है, मखमल छड़ के कंडे आते सोना बड़ा ही औखा है।

0: गायक रिंकू शाह दीवाना। रिंकू शाह दीवाना हरप्रीत वांग ही बहुत ही सुरीली आवाज़ का मालिक है, तो इस दे नाल दी नाल उस दे हत्थां दे विच भी संगीत है, उस दे गले दे विच भी पूरा सोज है, तो वह जिन्हां शब्दां नूं अपने गले दे विच उतारदा है तां उत्थों बहुत ही सुरीली आवाज़ निकलदी है, उस दे नाल उस स्रोतियां दा मन मोह लैंदा है। रिंकू शाह दीवाना दी इस बार चरण सिंह सफरी जी दी एक धार्मिक प्यारी इतिहासिक रचना लेके हाजिर हो रहा है रिंकू शाह दीवाना जी, थोड़ा प्रोग्राम गौंदी शाम दे विच निघा स्वागत है।
1: हैलो जी, सत श्री अकाल जनाब। चरण सिंह सफरी पंजाब दे उगे शायर जिन्हां ने कई धार्मिक गीत पंजाब दी मां बोली दी झोली पाए और सिखी दी सेवा कीती अपनी कलम राही, उन्हां दी एक रचना एक गीत धार्मिक आप दी नजर करन लगा हां।

एहसास करो ओ मेरी माँ है कंबदी, जद हवा चलेगी ठंडी तन नो चंबदी, एहसास